0: की क्षमता में बने दे बाहर जो माता से रहता थे फल नो नियो बोले अफेक्ट जो रहता साउदी बाकुंडा से नियो पूजा बत्ती ने पिसन
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.